प्रभात एसएमएन की सुरक्षमलो आठ जीगा हेल्प पर हम आकाशवाणी के बोल रहे हैं। आज दिन शनिवार 17

स्वास्थ्यों का साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। दोनों देशों के बीच 2024 बजट में 28 अरब 80 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज़ जलजंतु मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन

थी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठा। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 3 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए

शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सुशीला सचिव ने मंदसौर के मरण केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली छुट्टी यात्रा है।

0: जिंदगी म्यूजिक के साथ शुरू हो गई, किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आपके माँ

शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटी उनके फल स्वरूप भरत का हृदय ग्लानि से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप कर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवार वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुमति

0: पर चरखा डोले पांच तत्व गुण दीनी चवरिया दास कवि के जतन कर ओही जो की त्यों धर दीनी चवरिया। निर्गुण भक्ति धारा के अप्रतिम कवि संत कबीर ने समाज की विडंबनाओं को उजागर किया और एक जीवन दर्शन दिया। ऐसी लागी लगन भक्ति संगीत पर आधारित श्रृंखला की इस कड़ी में एक बार फिर हम श्री अनूप जलोटा जी का स्वागत कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आज की कड़ी में अनूप जी कवि की रचनाओं की चर्चा हम करेंगे। बताइए किस रचना या यूँ कहें कि जो हमें पसंद है कैसा आज उसकी चर्चा करें। चदरिया धीमी रे धीमी,
1: चदरिया धीमी रे धीमी मेरे पिताजी ने बहुत गाया और बहुत लोकप्रिय किया। उसके बाद मैं भी चल पड़ा इस भजन को लेकर आगे। ये भजन यूँ तो राग बेस पर आधारित है, लेकिन इसमें एक रागमाला प्रस्तुत की जाती है और रागमाला प्रस्तुत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लोगों में जो लोग शास्त्रीय संगीत के

शास्त्र से सुनने लगे, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे दर्शन हम रागों से कराते हैं उससे उनका दिल उभरता है और वो कहते हैं इसको और गाइए।

0: सुंदर, बहुत बार सुना है ये भजन हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुना और इतनी बारीकियां पता चली, कई रागों की जगह देखने को मिली। आप अनुप जी हमें बताइए, हमारे तमाम श्रोताओं को, कि ये जो रागों का खेल करते हैं, कई रागों का मिश्रण करते हैं, उसके बावजूद सरलीकरण करके लोगों तक पहुँचाते हैं भजन, ये जादू कैसे करते हैं?
1: वैसे भी राग सरल चीज है, राग कठिन चीज नहीं। राग का मतलब है कि किसी चीज को सुंदर बनाना। तो जब स्वरों को एक सुंदर रचना दी जाए, एक सुंदर कॉम्बिनेशन दिया जाए, तो राग बन जाती है। यही लोगों को डरा दिया गया है कि ये क्लासिकल मुश्किल चीज है। क्लासिकल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, थोड़ा आपका कंसंट्रेशन हो, इसका आनंद दोगुना हो जाता है। आपको अगर थोड़ा सा रागों का पता लग जाए, तो उसी गाने को जो आप पहले से सुन रहे हैं, उस गाने को आप ज़्यादा इंजॉय करने लगेंगे, अगर आपको पता लग जाए कि किस राग में। इसलिए शास्त्रीय संगीत की ओर आपका झुकना, आपका आकर्षित होना बहुत आवश्यक है, तभी आप संगीत में और आनंद ले सकते।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी जानकारी देने के लिए, हमारे श्रोताओं का भी बहुत लाभ होगा। और वैसे भी संगीत सुविधा एक पाठ की तरह है श्रोताओं के लिए, कलम और कागज लेकर बैठते हैं, नोट करते हैं, और हम भी कागज कलम लेकर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब समय आ गया है इस कड़ी को समेटने का। ऐसी

最早就研究过孙悟空和四小龙女的这个事情，最早就是关于一些什么柴家祭祀。

लाइफ सेटिंग के दौरान

तक मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि 10 लाख बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहती है गर्व है, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से

पर आगमन का प्रतीक है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए हिमालय में कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गंगा की धरती पर आने को तैयार थी। जब गंगा धरती पर उतरी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि उसको संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटा में धारण किया। इसीलिए इस दिन शिव जी की पूजा भी की जाती है और माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान और पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो सकते हैं। गंगा न केवल एक पवित्र नदी है बल्कि इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। शांति और अच्छाई की प्रतीक गंगा नदी के बहते पानी में हजारों दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। देश के कई प्रदेशों में बड़ी धूमधाम से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। लेकिन हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी में ये एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है।

नहीं पवित्र रहता है। लेकिन जिस प्रकार आजकल न सिर्फ गंगा नदी बल्कि अन्य बहुत सारी नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। हमें समझने की आवश्यकता है कि गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि जीवन काल और लोक संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। गंगा सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ साथ विकास की जननी भी।

दुनिया की सब से नदियों में से एक कहलाती है। गंगा की निर्मल और पावन जल पर समय समय पर बहुत सारे शोध भी किए गए हैं और विज्ञान की हर कसौटी पर गंगा का जल भी खड़ा उतरा।

में से करना को ही नहीं बल्कि अन्य नदियों को भी माता के रूप में पूजा जाता है। ये सदा से ही हमारे लिए जीवनदायी रही।

सारी रुकावटें आने के बाद भी जीवन से आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर

कचरा और मल होने वाली मालगाड़ी मान लिया है। इसके कारण गंगा का जल प्रदूषित होता है, वो अपना संतुलन भी खोती है। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या है। हम अपने दैनिक जीवन में जल प्रदूषित करेंगे, जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हम

सभी हम लोगों ने बातचीत की है और अटेंडेंस करी और सफाई के मामले में उसका मेंटेन किया जा रहा है सदर हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स के भी और स्टाफ के भी अच्छा सुविधा है। यहाँ जाए तो लोग एम आर आई सोनोग्राफी लगभग 0 बजट भी है उसी दिन रिपोर्ट भी आ जाती है।

0: कंफर्म 10 साल जयपुर में फ्यूचर किया तो इस लड़कपन का दौर था हमारा
1: लेकिन बहुत ही परिवार के सदस्य राजेश जी
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था उसकी का जॉब नहीं इसलिए मुझे उसके शरीर से इन चीज़ों को मार रहे हैं और सरकार का जो था अवसर दिया मेरे पास ज्ञान की उड़ान बाकी उसका हो गया और जब दीदी दीदी के साथ शुरू हो गए किसी चाय के साथ नहीं हुआ

डिग्री का प्रॉब्लम है बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी फिनिकल भी आना है गर्मी की वजह से और आप रिलैक्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी हो या टॉवल से गॉर्ज से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ ये सब चीज़ें आप पीछे इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। जैसे अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या प्रेगनेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो जो लिक्विड हो अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्यूल जाना चाहिए किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सरसाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उससे आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको रही टाइम भी दिया जाए और मेडिसिन लेना पड़े, डिपेंड्स अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन केयर एंड अलर्ट रहने की।

कंपनी का परिवार पंजाब के होशियार से रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म

लिखी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और

असल में अनुभव हासिल करने के लिए न सिर्फ हिंसाओं और मानव कौल के थिएटर ग्रुप के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे। और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से, गेम्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही

हिम्मत बढ़ा ये हिरा दी जाती जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग हिम्मत पर एक फिल्म बनाई

उधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार उधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म

Father, doing in the spirit of the Lord, मोहे के मुहा किसान एक गीत गाया करता था। वो मोहे किसान का गीत ये दिन

पर अच्छे एक्टर बनना और शिखर संतोष है। और इसमें हम याद कर रहे हैं एक खास अभिनेता को, विक्स कर सकते हैं।

होता है उम्र के उस पड़ाव में जब हम सही मायनों में अपनी रुचि समझते हैं, उस इंटरेस्ट को अपने जीवन के उस पड़ाव में महसूस किए और उनके उस

Thank you.

असिस्टेंट के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री की और वो फिल्म थी और इसके बाद उनको बच्चा बड़ा

अवार्ड दिया। इसके अलावा संजू फिल्म ने डंकी ने फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी लिया।

இருப்பர்.

Oh.

ये लोगों के बीच अविश्वास और सहिष्णुता और भेदभाव को कम करना और शांतिपूर्ण रूप से साथ रहने के लिए प्रेरित करें हैं। और आज के जीवन चर्या में ये जरूरी भी है कि मतभेदों को भुलाकर हम अपने काम को सुचारू रूप से करते हैं, तभी हम सही मायने में प्रगति कर पाएंगे। स्वाभाविक प्रकार से देखा जाए तो यह दिवस हमें याद दिलाता है कि स्थायी शांति केवल संघर्ष का न होना नहीं है, बल्कि इसके पीछे सकारात्मकता और सहयोग की भावना भी निहित है, जिसमें सभी की भागीदारी की जरूरत होती है और इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए।

और सब खाने के लिए प्रेरित भी करता है। किसी भाग के लिए इसी भाग को अपना लिया जाए तो पूरी स्थिति एक कुटुंब की तरह साथ होगी और एक दूसरे के साथ में सहयोग करेगी। श्रोताओं जी ने कहा है, सात संदूकों में भर कर दस में कर्जों में रखे और इन सात को मोहब्बत के

लिखा था किरण मिताली।

का उत्तर नहीं है बल्कि यह व्यक्ति की संस्कृति, कला, शिक्षा और सभ्य के विकास में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका को बताता है। पर थोड़ा मैं भी क्यों फिर भी आज के दिन 1905 को भारतीय के वैज्ञानिक और इंजीनियर थियोडोर मेमन ने लेजर का पहला सफल परीक्षण किया था और यह एक ऐसी क्रांतिकारी वैज्ञानिक खोज थी जिसने संचार की चिकित्सा और तकनीक की दुनिया बदल दी। और इसकी उपलब्धि को याद करते हुए यूनेस्को ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि ऐसे प्रकाश आधारित तकनीक से हमारे जीवन को बेहतर बनाए।

देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, विशेष रूप से लेजर ऑप्टिक्स और फाइबर ऑप्टिक्स जैसी तकनीकों में जो चिकित्सा में एक्सरे से लेकर इंटरनेट में काम आती है। जिससे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ऊर्जा की खपत कम करना और हरित ऊर्जा अपनाना आवश्यक हो गया है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि सौर ऊर्जा जैसी प्रकाश

in the mind of each and how it is that I, with that

और भारतीय परिदृश्य में कई बड़े बदलाव कर रहा है। इसी दिन विज्ञान ने नई ऊंचाइयां छुई, राजनीति ने

एक ऐसा दिन है जो विश्व और भारतीय परिदृश्य में कई बड़े बदलाव कर रहा है। इसी दिन विज्ञान ने नई ऊंचाइयां छुई, राजनीति ने सरक ली और समाज में नई सत्ता की नींव रखी गई। भारत में गठबंधन के विलय की बात पहली बार 2016 मई को समय समय पर यह साबित हुआ कि तारीख में सिर्फ कैलेंडर की संख्या नहीं बल्कि अभी के ऑस्कर अवार्ड समारोह अगर आपने देखा हो तो दुनिया भर की फिल्मी जगत सितारों से चमकती रात सिर्फ जल्दी हॉल एक सीमित नहीं रहती बल्कि इसके बाहर मीडिया और फैंस का नाता लगा रहता है। लेकिन पहला ऑस्कर अवार्ड समारोह बिल्कुल भी नहीं को हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल के ब्लॉसम रूम में एक निजी डिनर के रूप में इसे आयोजित किया गया था। केवल 15 मिनट के इस समारोह में 1927 अभिनेता और 28 फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। 1915 मिनट के समारोह में लगभग 270 लोग शामिल

बोलचाल की भाषा में ऑस्कर के नाम से जाना जाने लगा। विजेताओं की घोषणा समारोह से 3 महीने पहले ही कर दी गई थी। इस समारोह में 10 फिल्मी दिन भ्रष्टाचार को और फिल्म द वे ऑफ ऑल फ्लैश एंड द लास्ट कमांड के लिए मिला, जबकि कर्तव्य ने फिल्म एवं सदन और स्टेट चैनल के लिए और अपने संघर्ष की समीक्षा फिल्म जगत से जुड़े हर व्यक्ति का सपना होता है जो अपने जीवन में एक बार ऑस्कर से जरूर लगाना चाहे और इसके लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं और इसी का नतीजा है कि हमारे पास कई बेहतरीन फिल्म है जो न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि कई बार हमारे मन को तोड़ने पर भी हमें मजबूर कर देती है। हमारे बॉलीवुड के

दोस्तों ही चाहिए जिसने कई भारतीय कलाकारों से इस फिल्म में पंद्रह ऑस्कर अवार्ड में जाने थी। फिल्म 11 फिल्मों में नॉमिनेट हुई और 8 ऑस्कर जीते थे। निर्देशक थे रिचर्ड एम्बर। इस फिल्म में भानु अथैया को बेस्ट कॉस्ट्यूम,

Christians in that

robotaczka taką szybkie. Bardzo ciężko jest starać się, chociaż dłużej. Bardzo ciężko jest starać się, a orwana się radza się, chcę się. I tak, i kiedy jest kapna się, chcę się urodzić. तो सुबह आज जाने के भारत का एक बेहद खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य के बारे में प्रधान सचिव के उत्तर में पूर्व में भूटान और दक्षिण में पश्चिम बंगाल यहाँ का सबसे बड़ा शहर यहाँ की राजधानी है। यह राज्य हमारे देश का वो हिस्सा है जिसकी पश्चिमी सीमा पर विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पश्चिम बंगाल स्थित है। जबकि हमारे जमशेदपुर की जीवन रेखा स्वर्ण रेखा है ना, वैसे

Cada sí, yo sé.

सुबह खाना शुरू की, जिसमें उनकी एक मृत्यु थी। भैंस के काम पर आने और वापस जाने के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है तो कंपनी की जिम्मेदारी होगी। उनके नेतृत्व में स्टील की उत्पादन क्षमता भी काफी बढ़ गई थी और 1989 में भारत सरकार ने उन्हें उद्योग में अपने अनुकरणीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनकी पुण्यतिथि पर भारतीय उत्पाद उद्योग और हम सभी जमशेदपुर वासी उन्हें उनके मीठे प्रबंधन, कौशल और मानवीय दृष्टिकोण के लिए

खूबसूरत है भजन आपने सुना पंडित जी माथे वो लता मंगेशकर की आवाज में गीत बोल पंडित नरेंद्र शर्मा ने शर्मा ने लिखे थे।

से 5 दिनों में गंभीर रूप धारण कर लेता है और यह एक वायरल संक्रमण है जो एडीज मच्छर से यह दिन के समय ही काटते हैं। डेंगू का वायरस शरीर में जाने के बाद शरीर के प्रतिरोधी डेंगू से तो हमें इसे पनपने से रोकना होगा। इस बीमारी में कमर और आंखों की पुतलियों में दर्द, मसूड़ों, नाक, गुदा और मूत्र नलिका से खून और जोड़ों में दर्द, शरीर पर लाल चकत्ते, ब्लड प्लेटलेट्स संख्या में भारी गिरावट का होना और ये सामान्य लक्षण है सुबह पर जो मलेरिया से मिलती है। कि प्रभावित व्यक्ति को बुखार आना बंद हो जाता है और वह यह समझता है कि वह ठीक हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि यह स्थिति और भी खतरनाक होती है सुबह। और आपको बता दें कि भारत में मौसम विभाग ने इस वर्ष में रिकॉर्ड गर्मी की चेतावनी भी दी है और विशेषज्ञों के अनुसार तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी डेंगू के जोखिम को 13% तक भी बढ़ा सकती है। इसे तो बीमारी कोई भी हो।

मोटे और किशोर कुमार की आवाजों में। शुभ के साथ ही कर देना

क्षेत्र का व्यवधान रूप केंद्र है। असम के एक तरह

तुम कहीं घर ना लेकर आ रहा।

0: कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया। वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का टर्निंग दौर था। टीम का जवाब भी जिसने मुझे उससे तरह से इन चीज़ों को संभालने और फैसला करने का अवसर दिया।
1: कुछ
0: मेरे पढ़ा जाने की उड़ान बाकी परिंदे में जाना थी और दिलजीत भी युद्ध के साथ शुरू हो गए। किसी शहर के साथ नहीं हुआ।
1: आज की महिमा

thing for them.

भी बनाई।

छावनी बदल जाएगी जब शुरू होगा एक सीरीला सफर, जो कि बस शुरू ही हो गया है। आज इस कार्यक्रम में आप हिंदी यानी राजू के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सादर नमस्कार। सीरीला सफर कार्यक्रम में हम जो इबारत या टेक्स्ट या वाक्यांश पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, उसी में वो शब्द समाये होते हैं जिनमें जिन पर कोई गीत सुना जा सकता है। वो गीत आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन से शब्दों पर गीत सुने जा सकते हैं। तो मैं बता दें कि आज भी बहुत सारे अंदाजे

सूरज के गर्मी से बेहाल नीले बदन मिसाइलों से टोका तो वो बोला, मैं चलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं, मगर जहाँ को रोशन करने वाले अकेले आते नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए का जश्न ली। अपने सबसे बड़े डर को जीत कर मंदिर तक पहुँचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहाँ भी थी जहाँ किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया और वहाँ भी जहाँ खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, कभी किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो

से जुड़ी हुई बातें शुरू हो रही है। क्या बात है, संदेशों तक हम आए तब तक एक सवाल पूछ लेते हैं कि रोशनी के लिए हमारे एक छोटा ने कहा भी है कि शुरुआत हुई थी सूरज की रोशनी से और उसके बाद सूरज की रोशनी की होते होते दिए की रोशनी तक पहुँचे। सूरज का महत्व अलग है, वो प्रकाश नहीं देता, प्राणियों को ऊर्जा भी देता है, जीवन देता है। बिना सूरज के जीवन की कल्पना भी बेमानी है। पहली बार दिए की रोशनी की तो सूरज के छिप जाने के बाद अंधेरे से लड़ने का प्रबल शस्त्र यदि है तो दिया ही है, जिसकी रोशनी में हम कुछ ताने वाले बुनते हैं और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है आपसे। मतलब दिया सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में करता है लेकिन रोशनी को देता है और बहुत सी बातें भी रोशनी देती है। तो दिया की बात करी है तो हमें ये बताइए कि क्या वो वक्त याद है जब अभी तो हम बिजली का उपयोग करते हैं और बड़े से मट्टी जलाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इन्वर्टर की भी बात कही है। जैसे जब इस बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था उस वक्त दिए के अलावा एक और चीज थी जो बहुत सारे घरों में जलती थी। अगर आपने वो देखा हो या उसका नाम याद आ रहा हो तो हमें जरूर बताएं। एक संदेश है कि आपके कार्यक्रम के लिए शब्दों का अनुमान लगाना बहुत रोमांचक है। जैसे सूरज और रोशनी

Dios, que es una

निकली थी आपके साथ करना पड़ता था, साफ करते समय बहुत एहतियात बरत।

0: पते पर मनचाही कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400009 मनचाही विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091 आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: तो हमें पूरी हुए सफर की बात जब हो रही है तो हमारे श्रोता ने याद किया है, हमें हल्की सी याद है कि गलियों और सड़कों पर लैंप पोस्ट हुआ करते थे जिसकी

से बता देती हूँ।

था दूर से कोरा, घर से दूर गगन से, आँख से दूर है आँख का तारा, बिखरा फूल चमन से। ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। बताइए कि ये कौन सा गाना है, किस

Gracias.

श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़े सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट में होता है या नहीं बताइए हमें। गाना मंजिल शब्द पर

0: सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: एग्जाम में नंबर नहीं हो सकता।

इसके जवाब में हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने अपने सहयोगी को कार्य क्षेत्र में कहा था तुम दूर ले जाते हो, क्या करते, कोई नहीं देखता, सिर्फ दो व्यक्ति तुम्हारा काम देखते हैं, एक ऊपर वाला स्टैंड, तुम अचानक खुद से पूछो। उसे बात लग गई और वो सुधर गया। क्या बात है, एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से कई बातों का समाधान हो जाता है, कई बार बिगड़ भी जाती है। सही कहा आपने, बने हुए या बिगड़े हुए तो बिल्कुल दूसरे के कई बार मूड पर भी डिपेंड करता है। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या वो गाना, क्या वो बात दूसरे को भी लगने वाली है या नहीं। एक श्रोता ने किशोर दा ने ये गाना एकदम हेमंत कुमार जी के अंदाज में गाया है। कभी कभी तो धोखा भी हो जाता है कि किसकी आवाज़ है, छोटी सी दुनिया

हाँ धन्यवाद। और बात हो रही थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की, लेकिन उससे पहले हम सोचते हैं कि ये गाना जल्दी से सुन लिया जाए। हम आपको बताते हैं इसका जवाब भी। ये गाना सुनिए,

हाँ हाँ सही जवाब। एक श्रोता ने कहा है कि हमें बूढ़े माली की मुस्कान याद आ गई। हमारे घर के सामने छोटा सा पार्क बना हुआ है पानी की टंकी के चारों तरफ, और उससे इतनी गर्मी में रोज एक बूढ़ा माली छतरी लगा करके घास काटते हैं। उनकी मुस्कान से हमें जो खुशी मिली नहीं बता सकते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता ने बताया किशोर कुमार और कुमकुम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के प्रमुख कलाकार। और एक और श्रोता ने कहा है कि पत्नी धर्मपत्नी के आगमन को 1977 में मेरी किस्मत बदल गई। इससे पहले स्कूल में था, वो आई तो आगे एक लग गया यानी 10 बन गया। ये पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है, बिल्कुल आ गई। और मुस्कान के साथ साथ वक्त किया कि ये घंटी भी आ गई कि अब आपसे इजाज़त लेनी है। तो सुरीला सफर कार्यक्रम को देनी देते हैं।

जल पर समय समय पर बहुत सारे शोध भी किए गए हैं और विज्ञान की हर कटौती पर गंगा का जल भी खरा उतरा है। विज्ञान भी मानता है कि गंगा जल में कीटाणुओं को मारने की क्षमता है। इसका जल हमेशा ही पवित्र रहता है, लेकिन जिस प्रकार आजकल न सिर्फ गंगा नदी बल्कि अन्य बहुत सारी नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। हमें समझने की आवश्यकता है कि गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि जीवन काल और लोक संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। गंगा सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ साथ विकास की गंगा भी।

भारत में सिर्फ गंगा को ही नहीं बल्कि अन्य नदियों को भी माता के रूप में पूजा जाती है। ये सदा से ही हमारे लिए जीवनदायिनी रही है। नदियाँ धरती पर जीवन के लिए एक आशीर्वाद है। हमें अपने जीवन में गंगा नदी की बहुत ही धारा से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार वो अपने गंतव्य की ओर पहुँचने के लिए बहुत सारी रुकावटें आने के बाद भी निरंतर आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहना है। हम गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन उसे माँ मानने का हमारा व्यवहार ठीक उसकी पूजा माता तक ही सीमित है। असल व्यवहार में हमने गंगा को प्रतिभा और मल ढोने वाली मालगाड़ी मान लिया है। इसके कारण गंगा का जल प्रदूषित होता है, वो अपना संतुलन भी खोती है। वर्तमान में जल संकट

अपने मन को भी प्रसन्न और स्वस्थ रख सकते हैं। गंगा की सफाई और स्वच्छता में भी हम अपना सहयोग कर सकते हैं। हमें गंगा के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर उसे संवारना होगा और उसे प्राथमिकता देनी होगी, ताकि गंगा का दोहन बंद हो सके और सही मायने में यही माँ गंगा की सच्ची सेवा और उपासना है।

से व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, तथा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में

प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना।

के पर दस विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और दस सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा।

अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की सुगम यात्रा के दौरान वह सुगम के प्रधानमंत्री उत्कृष्टन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत सुगम संबंधों के सुगम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर

की जनगणना 2027 के अंतर्गत झारखंड डाटा बेहतर करने का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के

से खेल या मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामला दर्ज कर दिया है। मुख्य उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते

थाईलैंड रैंकिंग रेडी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में साक्षी और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के मूल जुद्दीन और गो से टीम को हराया।

के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करें। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनः

पर मैं आपने सुना रहा हूँ कृष्ण के बोलो को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदा बहार मौसम कार्यक्रम का अगला कार्यक्रम गई स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और पलक महमूद की आवाज़ें थी। प्रदीप के बोल हैं और बसंत देसाई की भूमि।

आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई कैसे है लता मंगेशकर।

0: साल जयपुर में फीचर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: लेकिन बहुत ही परिवार के सदस्य राजेश,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। टीम का जवाब दी विजय मुझे इसके चरण से इन चीज़ों को घुमा दे और प्रचार करने का अवसर दिया।
1: कुछ
0: मैंने पढ़ा नारी कितने उड़ान भरती है, परिंदे में उड़ान भरती है, और जब जी जी जी के साथ शुरू हो कि किसी शहर के साथ नहीं हुआ,

अपने कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है।

शेयर खासकर के राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करे। इस विषम मांझी खान के लिए बिना विलम्ब किए सरकार एक नेता को नियुक्त करे जो सेवा करे। आएंगे तो हमें यहाँ मिलना चाहिए और जो जब कभी भी मधुबन आएंगे इस प्रकार बंद रहेगी इस ताला को हटा करके और समाज से आग्रह करके इस क्षेत्र के जितना भी ग्राम प्रधान लोग हैं मांझी बाबा लोग हैं सबको बुला के कहेंगे कि भाई एक आदमी को तुम लोग नायक

to do

बच्चा ये दिल का अफसाना आपने सुना चंदा से। और अब मंजा जी कार्यक्रम का अगला गाना शंकर जी पैंसिल से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज से। जानकार अख्तर के बोल और हवान की संगीत रचना सुनना चाहते हैं रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता प्रियांश गुप्ता और शशांक गुप्ता लखनपुर से रामजी साहू जीवनलाल रजक मिन्नी शिवम सतीश और मुकेश कुमार साहू।

ना मन चाहा दिए थे। बरिगर से पसंद संगी बर से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की इस गाने को सुनना चाहते हैं गाने चौक रोप और पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जैसे बिरक और उनका बिरक तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो शोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। मेरी टीम ने मजबूर सुल्तानपुरी का गीत बना है

हुआ सुंदर है ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। कल कौन थे जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और विक्रम गुर्जर की फरमाइश है। शामली जिले के दस विधायक के गए और विधानसेठ ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम शरण ने।

की आवाजों में समीति बोल नवीन चरण का संगीत था और विविध कार्यक्रम की आखिरी पेश कर अब दीजिए कार्यक्रम से राजू को इजाजत सुनते रहिए।

राजन तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ युवान सोहन हुए आपके चक्र पर दुखों के दुख दूर करने के लिए राजन मेरे अपराधों को मारने के लिए नहीं उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दिया है तब अक्षम का आदि उठाए मैंने अपना बाण लौटाया गुरु वंश में उत्पन्न हम जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही होता है ईश्वर करे आपको अपनी तरह भगवान प्रकाशी और चक्रवर्ती को दिखा दो आपके वचनों की रक्षा करने वाले मुझे कुमारों का परिचय जान सकता हूँ हम कुलपति कर्ण के शिक्षक राजे मेरा नाम शारंगव है और मैं हूँ शारंगव महर्षि कर्ण के शिष्य हूँ आप लोग हाँ सर मालिनी नदी के तट के समीप हूँ आप लोग यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहाँ पर रहकर आप इसे प्रदान करें राजन अवश्य कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन मन से रहना चाहेगा कुलपति को भी आश्रम में नहीं चला गया किसी काम से बाहर गए हुए उनको आपके आदित्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी हाँ इस तरह से व्यवहार की वह शकुंतला उपस्थित है तो कोई बात हमारे कुलपति की कमी नहीं करा गई कुलपति पर लौटे उनका लौटना तो निश्चित नहीं है किंतु आप संकोच न करें सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा आप आश्रम में बढ़ाए रहे हम अभी सुविधा लेकर उपस्थित होंगे ठीक है इस पुलिस आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर

भगवान के पवित्र भूमि में श्री धनुष्वर के आभूषण पोज से डर रहे हैं। यहाँ हमें यही भाव से ही जाना चाहते हैं क्योंकि सब है हमारे आश्रम वास्तु के दर्शन कर अभी आता हूँ। तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा दो, आपके अरे फिर मेरी दाहिनी भुजा तो फर्क रह चुकी है, क्योंकि आश्रम जैसे शांत स्थान में जहाँ संकेत का

तो आएगा कि वो चल कर देखो क्या रूप क्या सौंदर्य है। आश्रम बालाओं के श्रावण्य के सामने बहनों की महत्व तो कुछ भी नहीं थी और लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उत्पन्न भी कहा देता है।

0: आज इसके सच्चाई के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त थे।
1: आप
0: लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गए होंगे, तो मैं भी ना आप लोग
1: तुम लोग बैठो, मैं भी। और

0: उसको इलाज नहीं किया है।
1: किंतु कुलपति काम तो शाश्वत ब्रह्मचारी है।
0: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य? वैसे तो इसके पिता राजस्व कौशिक है, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कर्ण ने इसका पालन पोषण किया है।
1: क्या मैं कुछ समझा नहीं?
0: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजस्व कौशिक अपनी परम तपस्या में लीन थी तो देवताओं को अपना आसन ढूंढता हुआ दिखाई देने लगा।

0: कि इसे क्या है रे?
1: कुछ नहीं, मैं उन्हें गेहूं की रदम्बन के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी क्षति को तपस्वी के धर्म का पालन करना पड़ रहा था।
0: ये तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य, कृपा कर्ण तो इसे किसी उपयुक्त स्तर को सौंपने की कामना रखते हैं। अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूँगी तुम्हारी ऊट पटांग बातों के बारे में। अतिथि को सत्कार किए बिना ही चली जाओगी? तुम जैसे जाओगी हमारे दो वृक्षों को सीखने का ऋण कौन चुकाएगा?
1: वृक्षों को सीखने का ऋण?
0: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचते हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने आज ही वृक्षों को पानी दिया था, इसमें शेष दो वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
1: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण। ये
0: देखिए
1: महाराज
0: को आप ही के पास होना चाहिए। आपको

अधिकांश हो गया है। अब उसके प्रेमी भूख को भी खेलना पड़ेगा। माधव

0: अच्छा भला राज का जो वैभव विलास छोड़कर बहेलिया तो बन गए हो।
1: हाँ मास्टर से बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा।
0: भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं ही थक गया हूँ माधव। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूँ।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव।
0: अंधे को जो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज।
1: किंतु माधव जी तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो। तो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित क्यों हो।

के चंद्रमा को लेने में सबसे बातें भी देखता था। अब लेकिन इस बात को तुम जानते ही नहीं। बात हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है और उसके जन्म एक अप्सरा के कोख से हुआ।

कुलपति तरुण इस समय यहाँ नहीं है, उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठा है। जब तक हमारे यज्ञ में पाठक करने का रहन कर रहा है, तब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं। आज आप लोग चिंता न करें, सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहाँ ले आए। आप लोग निश्चिंत होकर बताइए, मैं अभी आ

अच्छा माता का आज से चार दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास मनाना महाराज माता इस दिन अच्छी उपस्थिति की आशा रखते

0: के वर्ण स्थान पर, राजा के स्थान पर नहीं तो बेटे के स्थान पर। तुम्हारी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम्हें पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
1: ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
0: और हाँ, तुम सब सेवकों को भी अपने साथ ले जाओ, यहाँ तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
1: अब तो खास कर लौटूंगा युवराज बनकर।
0: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
1: सभी महाराज,
0: यही कि मैं यहाँ तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूँ, समझे? सतमुचला वाली बात तो मेरी मुन्नी मन बहलाने के लिए कह रही थी, उसे बचना समझते हैं।
1: ठीक है, जब तुम खुद बतला रहे हो तो मैं सच को मानने लगा।

इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना ली, फिर वो लोग चुप गए। एक छोटी गायिका की मुझे याद है, नाम नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसे गीत गोपाल करके वाला थी, मधुकर जी ने ही लिखा था, वो पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है उसका, इसके बारे में। तो उसमें वो थी छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती। एक समय साढ़े पाँच सुर है तो फर्ज के जो सुर होते हैं आवाज आती ही नहीं थी गले को। तो उन्होंने ज्यादा ऊँचे ऊँचे सुर में गाना चाहती थी, क्योंकि तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जैसा सुर ऊपर ले लूँ क्या खेल। नहीं नहीं नहीं नहीं वो नहीं, तू घर जा सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना। वो किसी के भी सुन ली जो उनको चाहिए चाहिए, दोनों में फर्क था।

बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थी। जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ, तो मेल सिंगर के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसलिए आपको बुलाया जाना, ये तो समझ में आता है। कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर

0: tiempo. Ahora tengo que meditar.
1: Sí.
0: Ahora, si me levantaba, era una oreja mejor.
1: Oh.
0: Después, ahora sí yo vuelvo a meditar.
1: Ah.
0: De este sí, ahora en Badiuma sí, tercera vez en sí. Entonces, bueno, si yo vuelvo a meditar, dono que va a escapar, me venga a escapar a la primera. Entonces, me alunca tu baja. Se me pidió pues para no te alegría. Entonces, cuando me meto, ahora yo, me doy a este vacío, y yo, una parte así, creo que se libre. उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा तो मैं बहुत जल्द बेजती थी हम ट्राई रिकॉर्डिंग तो सचान जी करके थे उनका ऐसे स्टूडियो था सचान लाल से दारगे में तो वहाँ पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ हमारा तो मेरा मेरा पार्ट मैंने अलग है लेकिन उनको मालूम था उस संजीव को कि ये काफी कुछ सीखी हुई है ये भी कुछ करेगी बीच में से मुझे साथ से तो उन्होंने मुझे ये किया था जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का और कुछ करने का मतलब अच्छा वो आपके हुकुम तो मैंने क्या अपना पार लगाया है ओह माय गॉड वो गाना था वो भी अच्छी सही लोग के सुंदर बहुत अच्छा गाना था अच्छा
1: आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगे
0: उनके गानों से अफसोस और गानों की वजह से और हर गाने का गाना जो मैं बताने की जरूरत नहीं कहने की हर तरह का गाना उनको वो गाना मुझे बहुत पसंद है क्या इनके नाम के कभी आपने जी में बहुत सारे मतलब ये एक ही गाना सुनना तो ना ही काफी हो लेकिन हर गाना उनका बहुत
1: ये गाना सुन लिया

0: रही है तो आपके शो का नाम है या कुछ कर रही है, मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने प्रोग्राम को प्रस्तुत किया जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किया?
1: रीजनल गाने तो होते थे क्योंकि मैं महाराष्ट्र में बोला हूँ चाहिए ही चाहिए
0: हाँ,
1: और उसमें भी एक लावनी पाया था पिछले अंबा वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ पुराना फिल्म का और सेकंड गाना लावनी दूसरा गाना लाऊंगी तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लाऊंगी नहीं गाया दूसरे नंबर पर तो लोग एकदम ऐसा अभी आ रही होने वाला है कि नहीं चार मैं भी उनको ज्यादा याद आ क्योंकि चार गाने पाँच गानों के बाद गाती थी अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे और वो लाऊंगी सुलोचना चौहान जी की तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे मुकाबले में तो वो गाना मेरे नाम से रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका तो एक बार सुलोचना चौहान जी का प्रोग्राम था मुझे एक कोई किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बजा वो कन्या दत्ता जी की लावनी ना पाया पिछले हम वो गाइए वो बहुत बहुत

कोई बात नहीं, इसमें गुजराती नहीं दूसरी बात नहीं गुजराती, फिर समय पड़ने जैसे पहले भी फिर मलयालम ऐसे थोड़ा थोड़ा तैयार करता रहता था। तो वहाँ के लोकल लोग बहुत खुश होते थे, उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना तो बस उनको मजा आ जाता सुनने। उसका एक मंथोर का किस्सा है ना आता है, मेरे तो मेरे ट्रेन में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता है, मेरे पीछे बड़ा रिकॉर्ड ऐसा करता चलता ऐसा स्टैंड पे हुआ करता है, बहुत बड़ा टाउन बना था। तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा का, जो पतरे का बना का, तो उससे मेरा नाम सुनने में आता है उसके बारे वो मेरे एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही मुझे उससे बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका बाबा आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था। तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में से था, हाँ इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गाँव है मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और वो रिकॉर्ड है उसको हम सैक्योर में डालते थे, तो संख्या से रिकॉर्ड घूम रही हो ऐसा लगता था, तो ऐसा भाग होता था लोगों को। तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप बता रहे हैं हमको लोगों को एडवेंस, तो उन्होंने क्या क्या हुआ मेरी

0: मंदिर था। मंदिर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है, मंदिर करके तो हमारा शो खत्म हुआ और एक रिकॉर्ड है उसको हम सैक्योर में डालते थे। तो ऐसा कि रिकॉर्ड घूम रही हो ऐसा लगता था, तो ऐसा भाग होता था लगे। तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप गुस्सा रहे हैं हमको लोगों को एडवेंस को, बोले क्या क्या हुआ मेरी मेरी के हिसाब से मुझे मालूम है हमको ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अच्छा गाने की, तो नहीं वो आप किसी रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मिला रहे हो उसे लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया। मैंने उसको बताया तीन कुछ एक से जाके दिखाया कि ऐसा होता है कि हम लोग गाना गाते हैं सामने ऐसा गाना है, फिर वो शांत हो गया।
1: श्रोताओं की बात निकली है तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गाँव में शो किए हैं और विदेशों में भी किए हैं, हर शहर का श्रोता अलग होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं लेकिन अनुभव से आपको मालूम होना चाहिए कि अभी गीतों की रचना भी तो करते हैं एक साल लगभग पाँच पाँच छः शाम तो धीमे गीत, फिर हाँ तो अच्छे शाम के सामने ये करते हैं, फिर दो गाने के बाद एक छोटा पकड़ जाना, फिर ये मुड़ कर गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप पकड़ना चाहिए वो सिखाते नहीं आती। और यहाँ तक हम पहली बार भी गए किसी शहर में किसी गाँव में छोटे से गाँव में भी, तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को किस प्रकार ये गाने चाहिए, तो होने से ज़्यादा अच्छा होता है।
1: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है महसूस होता है?
0: फर्क नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे ये अच्छा लगता है क्योंकि रफी साहब के साथ नए गाँव या उनके बाद नए गाँव तो वो बिल्कुल मतलब ये था मुझे याद नहीं रहते लेकिन लोगों को पसंद आते थे सेना बंगला भी अच्छे रहते हैं या फिर कभी फिल्मों में गाया है क्या ये सब पूछते थे उनके रास्ते।
1: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज़्यादा होती है?
0: वो रफी साहब का गाना एक दुआ है, सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, और इतनी गाड़ी जिसकी हमारे साथ होते थे तो वो आगे आके उनको उसको एक कर दे ना मैं बताती हूँ आपको। रफी साहब मेरे शुरू करते थे

0: क्लोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है।
1: तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे डरा किसी होने गाया, लेकिन

0: como é que você vê isso? और लोगों की दुआ से इसमें तो बहुत ही बहुत अच्छा चला और नाम ले लिए मेरे लोग के ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया था कि ऐसा होना चाहिए था ओके एक पूना से हमारे ये है उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे और फिर क्या बोले तो लोग को ये कंसेप्ट था कि वो मेरा ढूंढा ये वो डांस हो लेकिन नहीं अच्छी तरह से ही करो क्योंकि लोगों को पसंद फिर पूना से हमारे एक जो कि आप यूज करते हैं जिससे उन्होंने बड़ा अच्छे को देखा तो बोले आपका तो ठंडा नहीं लगता है तो वो सब एक कॉम्प्लीमेंट लग गया
1: बहुत अच्छी
0: ज्यादा इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है
1: चलो मैं आपके प्रेजेंटेशन में चाहिए
0: तो आप उससे चाहिए तो
1: जी सवाल है वो जो है बहुत सुंदर था ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगे कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है कोई बहुत बड़े नाम गिरामी लोग हैं और वो शो के लिए आए हैं
0: आए थे बहुत सारे मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मिले लेकिन अभी ज्यादा नाम मुझे याद नहीं होते थे कंपनी के लिए कंपनी के लिए बहुत शो है मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्री से मुंबई के आसपास और बाहर गाँव में भी बहुत सारी कंपनी है उनके लिए चाहे तो शो बहुत हुए हैं नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया कंपनी
1: अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए हैं उसका अपना अलग अंदाज होता है अपना स्टाइल होता है ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया मजा आया सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है
0: उसमें
1: विशेषता होती है फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती है हर तरह के संगीत पुराने जमाने के जितने संगीतकार हो आप मुबारक बेगम के गाय गाने प्रस्तुत करते थे यादव गंती के वो जो एक वहाँ से पूरा दौर अब आ सकता है जिनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशन गाते हुए आपको कैसा लगा कैसा फील हुआ
0: यही मैं कहने वाली थी कि पुराने जमाने के जो कंपोजिशन थे वो चैलेंजिंग थे

0: Quello va fatto, appena manca, sempre la stai. Se lì hai un mio tempo, la mia cosa qui. Ma se tu hai detto, va bene qui. Se tu hai detto, va bene qui. Se tu hai detto, va bene qui. Se tu hai detto, va bene qui. Se tu hai detto, va bene qui. Se tu hai detto, va bene qui. Se tu hai detto, va bene qui. Se tu hai detto, va bene qui. Se और लोगों के सामने इतने तैयार थे कि वो लोग बड़े संगीत नाम सीखे हो संगीत में उनकी जानकारी थी लेकिन इधर इन्हें जरूरत है ऐसा चिल्ला थे तो जरा भी मैं इससे कितना बताती हूँ मेरा आपको खोखला करके बहुत अच्छे गजल गाए थे उन्होंने शुरुआत कर दी कि मेरे सोच से की थी तो वो चले क्लासिकल या किस आप कहते हैं मधुबन में राधिका नाचने वाले तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा और कितने सरगर्म ये सब है वो अच्छी तरह से गाता था लेकिन गाने के अंत में एक पानी नहीं हुई है तो नंदुरबार करके गाँव है छोटा सा वधुलिया के पास तो वहाँ पे एक आदमी आया मेरे पास तो आते अच्छा थोड़ा अच्छा हुआ ये अच्छा ये गाना क्यों नहीं गाया वाया तो आया और आपके आर्टिस्ट से वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया मुझे भी समझ नहीं आया कि नहीं मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था उसका आपके कहीं कल्याण था तो नहीं वो लास्ट में जो कहानी है वो उसने नहीं लिया वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी मेरे घर साहब की गाई हुई है वो देखिए रफी साहब गा नहीं सकते ऐसा नहीं था लेकिन वो कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के कैरेक्टर को उतारे हुए मुकरी तो उतना भी उसको मानना पड़ा म्यूजिक का एक चीज भी इधर उधर हो जाए बराबर उनको करके चिल्ला देते वहाँ
1: जो है दर्शक जो है वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और ये
0: कुछ अभी गाना है जो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है वहाँ नहीं चाहिए वो तो आगे तो बड़े जाता था इतना म्यूजिक सुपर से चलता था शब्दों से
1: ऑर्केस्ट्रा में जो वहाँ से म्यूजिशियंस होते हैं उनकी नज़र से एक सवाल ये पूछना चाहूँगा क्योंकि हर म्यूजिशियन को जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता
0: नहीं
1: तो बहुत से म्यूजिशियन जो है ऑर्केस्ट्रा में जो अपना बजा करते हैं अपना उधर निर्वाह करते हैं तो उनके दृष्टि से ये सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए शो की तैयारी के
0: लिए उनको रिहर्सल बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से म्यूजिक के हिसाब से गाने के हिसाब से इस समय अब बदलाव किस तरह से आया है अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20-25 शो हुआ करते थे वही तो मेरा ये था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए नहीं तो आज ये ग्रुप वाला आया सर ये की बोल रहा उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था सालों साल तक अभी मैंने 2023 को एक शो किया बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही थी शो करना अभी किसी गा सकती है क्योंकि मैं गाने देखती थी ना वो चार साल से तो एक शो पर मैं तो मैंने कहा चलो चलते होली पाड़ा के दिन 23 मार्च 2023 को शो किया तो एक तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी मेरे लिए म्यूजिशियन का पेमेंट मतलब उसका ये नहीं करूँगी लेकिन एक साल के हिसाब से सिंपल से बदली हो जाएगा तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का उसके एक रिहर्सल ऑन शो बस दूसरी रिहर्सल में एक ही रिहर्सल वो मुझे कभी मालूम शुरू होगा नहीं तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी होती थे म्यूजिशियन संजय मराठे करके है तो बहुत बड़े शुरुआत मेरे करियर मेरे शो से हुई और आज वो बहुत ही एस्टैब्लिश सेटअप का ग्रुप है तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ मुझे शो करना है तो ज़्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता है तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल एक रिहर्सल और शो लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको शो को
1: आपने अशोक खुशरा जी का जिक्र किया ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके फिर आगे
0: विनय मंचे विनय मंचे विनय मंचे
1: मैं चुनाव को बता दूँ कि बहुत से विज्ञापनों में जिन्हें आरके जी की आवाज़ हम सुनते हैं तो
0: उसको जिंदल सिंह भी बोलते थे हाँ बहुत सारे जिंदल विधायक थे और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है स्टेज परफॉर्म होता है वो था बहुत सारे ऐसे मुझे बातें भी करने का मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से ऐसा चलता था कि वो जो कव्वाली अशोक खुशरा जी गाते थे अभी तुम्हें नट लाते हैं आप तो उसने को रखा तो मैंने गाय चला था उसको को रख देने के लिए तो ये जब कुछ गुमगुम बिजली बोले अशोक जी इतने

0: مزايا مزايا
1: المحبة
0: تشيء إذا هي قاعدة ناجدة هو ليس لبنتك من زمانك يا ناري من زمانك يا ناري फिर एक लास्ट में लाइन था खत में कंगन कान्हे बाली ये बोला था खत में कंगन कान्हे बाली कभी बोला था योगी का वाली कभी बोला था खोटी वाली कुछ भी ऐसा बहुत ठीक था लग रहा था मजा
1: मस्ती के मोड़ में
0: मस्ती के मोड़ में

0: तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी और वो कुछ मैं तो उसके सामने बैठी थी। मुझे लगा मैंने जन्नत पाई, सामने दर्शन हुआ साक्षात। तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके कहने पर से आना किया, कैसे आप कैसे पाया लाते हैं महाराज के मेरे। तो मेरा मेरी मदद शो आपके डर है कि पूरी पाए वाला सर आप पर लाओ ऐसी खूब इच्छा है, लेकिन वो बाहर बाहर जाने वाली थी अपने यार। फिर मुझे उन्होंने पूछ लिया कि कैसे वो तुम्हें आपके प्रोग्राम करता है, उन्हें प्रवास का रहता है, उन्हें गाया हुआ रहता है, कैसे घर काम के उन्हें इजाजत हो रही है, हो जाता है। मतलब उसके उसके बाद वो नोन थी कि हम शो करते हैं, नहीं नहीं शो होते हैं, पूरा मालूम आता
1: है। मालूम था अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लगा जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पर अलग अलग शो में आपने अलग अलग गाने
0: उठाए।
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनाना चाहेंगे?
0: उनका एक सजा फिल्म का गीत है।

0: देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है जो
1: लावणिया
0: उसकी फरमाइश हमेशा होती थी या उसका शो में
1: बहुत ही जरूरी था।
0: और ये तो पहले आपको झलक सुनेंगे और मुझे लावणी

0: मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन, तो मैं बोले अभी अगली बार मैं गाऊंगी तो बहुत खड़ा ही हूँ तो पारा चुना मैं बोलूंगी अम्बा बोलेंगे तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के शर्मा थे अम्बा बैठकर अरे क्या कर रहे हैं आप अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से जोर से एकदम जोर जोर लगा के अम्बा आता था चला आता था उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ भी किया
1: जी आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह शोक का पीस थी तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ का कोई गाना आपको नहीं सुनाया
0: जा चुके हैं आपने मेरी कनाडा गाना सुना
1: जी जी
0: मेरी लड़की में है ना रखी कह रहे हैं

0: जवाब देना है यार, कुछ बोल नहीं सकते।
1: 1975 में जो शुरुआत हुई, उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की तहरीर बनाई
0: सुनाई
1: है ना, और आखिरी शो जब किया, सबकी जो शो की जो लिस्ट थी,
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें जो लोग पसंद करते थे। लेकिन जो एक तो गाँव के हिसाब से गाने बदले होते थे इधर उधर, लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरी पसंद के या लोगों की पसंद के पहले से थे, उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक और जो मैंने बोली बजाने बजाने को जी करता है कि तारा लटिकला अम्मा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की, वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी। उनके गाने अलग अलग थे लेकिन वो वही गाने चले लोगों को बहुत मजा आया।
1: बहुत मजा आया आपकी बातों से और आपके अनुभव सुनकर।
0: हाँ जी
1: प्रमिला जी, अगर

0: के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त बहुत अच्छा और ऊपर वाले का एक कर्म है कि आज आप यहाँ पर और इतनी सारी बातें हमसे की, अच्छे अनुभव हमसे साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम धन्यवादों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे, और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आप पीछे कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।

0: हम 10 साल जयपुर में क्षेत्र किया तो एक पुनर्स्थान का दौर था हमारा, लेकिन घर की परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी वो मेरे पूरे करियर का रनिंग दौर था। ठीक है जवाब नहीं जिसने मुझे इस तरह से इन चीज़ों को समाज दें और सरकार के प्रति का अवसर दिया। कुछ
1: शाम 4 बजे

quantity

होकर भी हमेशा पास रहते हैं। खुद को कहलाया

करने से शुरू है। अपनी बेबसी पर खुद सारा कुछ है, काश वो भी खुल के एक ही शब्द होता, कुछ पल के साथ होते वो

में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माई लव फिल्म के गाने से। आशा भोसले की आवाज है, आनंद बख्शी की रचना, दानसिंह का संगीत।

किसी को फिल्म का गाना अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ में इशारत करने की वो है गीत गांगुली का संगीतकार।

0: जहाँ की बन जाती है जिसा की बन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा
0: जहाँ की से गूंजते हैं कुछ मोल लग गई।

प्रियंका का नाम सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल थे श्रीकांत प्यारेलाल का संगीत था। तराने नए पुराने

ಗೀತೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗತ್ಮಕತೆಗೆ

तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। ये खूबसूरत सी गजल है नूर हसन की गई हुई, संगीत सुहेल राणा का है और रचना है मजरूर की।

100%

जनाब, समंदर हमने आंखों में छुपा सकता है, शब्द के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देखा।

को छुपाने की तमन्ना है उसे, आज हर बात पर हंसते हुए दिखा है उसे। फिल्म पारस मनी आवाज में लता मंगेशकर और कमाल बलोचरी, गीत लिखा था सब

था लक्ष्मीकांत प्यारे लाली, जिसका गाना हमने लिया था समीर फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की थी और सपन चक्रवर्ती का संगीत और कभी नहीं खत्म करने की इजाजत दी थी। उमा पांडे को नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम शीर्षक, ये आकाशवाणी जमशेदपुर का पीड़ित पार्टी के लिए।

संगीत उठा समझता है

Hey, it's me, this is Lady. I should buy the payday number.

kind of pointy neighborhood, pretty neat. Got 22 street food covered in 60 days. आपको बता दें आज की इसके बारे में प्रसार कल से मुझे बताइए. आज की इस सुबह में शाम 10 मिनट पर कार्यक्रम जयमाला के तहत आज सुनेंगे सेलिब्रिटी स्पेशल. शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इन सुखनोश. आज बजे होगा नाटकों का कार्यक्रम हवा में.

करने की तो का कार्यक्रम होगा रात चलती जाए रात। श्रोताओं आपको याद दिला दें हमारी ये सभा चलती है रात 11 बजे तक। आप कार्यक्रम वेतन FM 90.8 MHz पर ये आकाशवाणी जमशेदपुर का व्यवधान है। 5 बजे आप

जीवन को पहुंचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य दलों के कार्यकर्ता

सोचा था कि इतना कुछ बड़ा स्टेप ले लेगा। आश्चर्य की बात यह है कि बच्चा डबल शेयरिंग रूम में रहता था, तो उसने दूसरे

करोड़ है, हस्बैंड वाइफ का केस मैट्रिमोनियल 17% अभी पूरे हिंदुस्तान। एक दूसरा साइबर क्राइम है, आदमी अपने लालच में विक्टिम हो रहे हैं और केस बढ़ते जा रहे हैं।

或者我怀疑这个东西会这样吗？

प्रचार खत्म। दिल्ली पहुंचकर हम सीधे पंडित नेहरू जी के बंगले पर गए उन्हें सलाम करने। उन्हीं दिनों एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए एक अमेरिकन टीम आई थी। पंडित जी ने उनसे मिलवाया और कहा कि ये हैं हमारे फिल्मी माउंटेनियर्स, अभी लद्दाख से आए हैं फौजी भाइयों का मनोरंजन करके। और फिर पंडित जी ने फरमाइश की कि वही गाना गाकर सुनाओ जो हमारे जवानों ने सबसे ज्यादा पसंद किया।

चलाया करते थे, उनके जानवर भूख और प्यास से मर रहे थे, तभी महामारी जगह फैल रही थी, मगर कोई भी राजपूत अपना गांव अपनी धरती छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं था और न ही गरीबी से तंग आकर कोई भीख मांगता हुआ दिखाई देता था। उस वक्त मुझे लगा ये भी एक जंग है, कुदरत के साथ जंग, गरीबी के साथ जंग, हालात के साथ जंग और इनकी जिंदगी

साथियों, की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया फिल्मकार सुनील दत्त ने। रिकॉर्डिंग आपने सुनी विविध भारती के संग्रहालय से।

जो है वो सिंगल नहीं है, इसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज सही पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। तो जैसे नाई के पास एक आवाज है, तब्बन मिर्जा साहब बुलाया, उनको सुना, तो आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, जो मिसाल गा गए आई जंजीर की धमकान खुदा कर, तो उसमें जो रिजम है जंजीर

तुम्हारी करके आपके नाम पर चिन्ह देते हैं। बाद में उस चिन्ह से कोई गलत गतिविधि होती है तो पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति के पास पहुंचती है। ऐसे में बेवजह पुलिस केस में नाम आने से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि समय समय पर आप चेक करेंगे कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड है। भारत सरकार ने इसके लिए संचार साथी नाम का एक पोर्टल बनाया है। ये पूरी तरह से फ्री और सुरक्षित तरीका है। जानकारी के लिए आज हम आपको बता रहे हैं कि संचार साथी में कैसे ये चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड है। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ब्राउजर खोलें और लिखें संचार साथी डॉट जी ओ वी डॉट इन। संचार साथी की स्पेलिंग है SANCHAR SATHI संचार साथी डॉट जी ओ वी डॉट इन या संचार डॉट साथी डॉट जी ओ वी डॉट इन। उसके बाद आपको एक ऑप्शन चुनना है नो योर मोबाइल कनेक्शन या कनेक्टेड मोबाइल नंबर। वहाँ अपना आधार नंबर और कैप्चा भरें, OTP आएगा उसे डालें। स्क्रीन पर आपके नाम पर रजिस्टर्ड सभी मोबाइल नंबर दिख जाएंगे। अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिखे जो कि अनजान हो, जो आपने कभी नहीं लिया, तो तुरंत उसी पोर्टल पर रिपोर्ट फ्रॉड या ब्लॉक कनेक्शन का ऑप्शन चुनें और इस तरह से आप उस सिम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। पर जिस सिम कार्ड को ब्लॉक करने के लिए पोर्टल पर सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर सेक्शन यानी CEIR सेक्शन में जाना है। वहाँ फर्जी नंबर की शिकायत दर्ज करना है। जो जरूरी दस्तावेज है वो आधार और फोटो हो सकते हैं, उन्हें अपलोड कीजिए। कुछ ही घंटों में ये नंबर ब्लॉक हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब झंझट करने की जरूरत क्या है, तो आपको बता दें कि अगर आपके नाम पर कोई फर्जी सिम कार्ड चल रहा है और कोई ठगी हो जाती है या कोई गलत काम हो जाता है तो सबसे पहले पुलिस आपके पास आएगी। इसलिए जरूरी है कि आप हमेशा चेक करते रहें कि आपके नाम पर कोई गलत सिम कार्ड तो नहीं चल रहा है। बैंक अकाउंट UPI आधार से लिंक होने पर आपके

bus for people saying that they would while looking for their connection or hotel booking. Ya, if you have done a deal for other parts, Katayi Nadi, Nadi Si Poppy Day, अगर तीन मेरे नहीं तो खुद मौजूद रहे किसी और व्यक्ति को सुन लेने के लिए ना दीजिए अगर कोई फर्जी नंबर मिले तो तुरंत ब्लॉक करें और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ

ही कर पाता है और उसके आगे क्या। ज्यादातर एयर कंडीशनर बाहर 50 या 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो तो ठीक से काम करते हैं, पर तापमान इससे ऊपर हो तो एसी की कूलिंग क्षमता जवाब देने लगती है। इसका कारण यह है कि एसी बाहर की गर्म हवा से अंदर की गर्मी निकालकर ठंडी हवा बनाता है। जब बाहर का तापमान 51-52 डिग्री हो जाता है जैसा जैसलमेर में हुआ, तो एसी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसलिए कमरे का तापमान 28-30 डिग्री से नीचे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एसी लगातार चलता है लेकिन ठंडक कम मिलती है, बिजली का बिल बढ़ता चला जाता है या फिर एसी जल्दी गर्म हो जाता है और खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। जिससे ये कहते हैं कि 50 डिग्री से ऊपर के तापमान में

सुन गई पर रही है कि ईसीटी ने सर्विस करवाई गर्मी से पहले और बीच बीच में ईसीटी अच्छे से सर्विसिंग करवाई क्योंकि ब्लॉक कोई ईसीटी परफॉर्मेंस पर असर रखते हैं।

अटलांटिक महासागर में होंडियस नामक क्रूज शिप पर 7 लोगों के बीमार पाए जाने और 3 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। इसका कारण है शिप पर संदिग्ध हंटा वायरस का फैल जाना। दरअसल जहाज में तकरीबन 150 यात्री और इसके अलावा चालक दल के सदस्य मौजूद थे। हंटा वायरस से जुड़े मामलों के सामने आने के बाद ये जहाज अब स्पेन के कैनरी आइलैंड की तरफ जा रहा है। यहाँ मरीजों को मेडिकल मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया है कि

का वायरस वायरस का एक ऐसा समूह है जो आमतौर पर चूहों और उनकी प्रजातियों में पाया जाता है। अगर ये इंसान में फैल जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक हर साल इसके संक्रमण से 10,000 से 1,00,000 तक लोग प्रभावित होते हैं। हंपा वायरस संक्रमित चूहों के लार, मूत्र और मल के जरिए बाहर निकलता है। जब ये पदार्थ सूख कर धूल बन जाता है और हवा में उड़ता है तो सांस के जरिए इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर

बच्चे जॉगिंग करते हुए या फिर इसके अलावा इसका खतरा ऐसे इलाकों में ज्यादा होता है जहाँ चूहों की संख्या ज्यादा हो। आमतौर पर इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, लेकिन कभी कभी जब लंबे समय तक लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तब ऐसा जरूर होता है। यही कारण है कि इसका संक्रमण खासकर घर के सदस्यों या करीबी

मजदूरी समस्याएं जैसे पेट दर्द, की मिटाना या उल्टी होना शामिल है। ये वायरस इंसान में दो तरह की बीमारी पैदा कर सकते हैं। पहली बीमारी है हंटा वायरस कार्डियो पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPCS। इसका असर ज्यादातर अमेरिका में देखा गया है। ये बीमारी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है जिससे फेफड़ों में पानी भर जाता है, इससे खांसी होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बीमारी जानलेवा साबित

को हिल और गुर्दे से जुड़ी समस्याओं पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और जरूरत पड़ने पर मरीज को सहायता दी जाती है। जब बीमारी फैल रही हो या मामले संदिग्ध हो तो मरीजों को फौरन पहचानना और उन्हें आइसोलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मरीजों के संपर्क में आए लोगों की टेस्टिंग जरूरी है और सामान्य बचाव के उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हंटा वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है इससे सावधान रहना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक संक्रमण से बचने के लिए चूहों की रोकथाम बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने को सुरक्षित तरीके से ढककर रखना है और इसके अलावा गंदगी से बचना एक बहुत जरूरी उपाय है। भारत में अलग अलग समूह के लोगों के शरीर में हंटा वायरस एंटीबॉडी होने की

मौजूद है और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और अब चलते चलते साइबर क्राइम की एक नई घटना और उससे जुड़ी पाबंदियों की बातें। बेंगलोर में एक व्यक्ति के पास व्हाट्सएप पर जारी का एक कार्ड आया। उसने वो कार्ड खोला और उसका बैंक अकाउंट खाली हो गया। दरअसल उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, उसको लगा कि ये शादी का कार्ड है। वहाँ एक फूलों से सजी हुई तस्वीर नजर आ रही थी, लेकिन वो फाइल कोई इमेज फाइल नहीं थी, बल्कि वो फाइल .apk फाइल थी जो किसी अनजान नंबर से आई थी और देखने में ये लग रहा था कि वो शादी का कार्ड है। दरअसल स्कैमर्स अक्सर लोगों की तकनीकी कमियों का ही फायदा उठाते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को फोन सुरक्षा के बेसिक रूल्स बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई जब कभी भी आपके पास किसी अनजान व्यक्ति का

बहुत बेसिक फाइल होगी, एसी के फाइल का मतलब ये कि आपके मोबाइल में कुछ इंस्टॉल किया जा रहा है। सावधान रहें, सतर्क रहें और साइबर क्राइम से बचें। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख स्वर और संपादन आपके दोस्त मनोज खान का था।

0: सारे जब तुमने जिसने किया तो एक पुनर्पण का दौर था हमारा,
1: लेकिन घर की परिवार की सदस्य
0: वो मेरे पूरे करियर था, फंडिंग दौर था, टीम का जवाब भी जिसने मुझे उसके सही से इन चीज़ों को हमार दे और सरकार से देखा अवसर दिया। मैंने पढ़ा घर की जुड़ान नौकरी इस समय में जाना थी और जब बिजली युद्ध के साथ शुरू हो गए कि किसी शायद के साथ नहीं हुआ

सिलसिला सुनो कहानी। सुनो कहानी के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ। आइए आप सुनते हैं पत्नी का पत्र, इस कहानी का तीसरा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का,

मृणाल अपने पति के नाम पत्र लिखती है जिसमें अपने अतीत की तमाम कड़वाहटों का जिक्र करती है। मृणाल की शादी उस घर में होती है जहाँ पुरुष करता है, जहाँ स्त्री का अपना कोई विचार या अस्तित्व नहीं है। विधवा माँ की मृत्यु के बाद मृणाल की जेठानी की बहन बिंदु अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार से तंग आकर मृणाल के घर आ जाती है, लेकिन मृणाल के परिवार के सदस्य बिंदु को सम्मान नहीं देते। बिंदु का रंग काला था। विवाह में अड़चने होती है लेकिन तय हो जाता है विवाह पर एक पागल व्यक्ति से। बिंदु कतई नहीं चाहती शादी करना। अब सुनिए आगे। बिंदु का वर ठीक हुआ। बड़ी जेठानी बोली, जान बसी माँ काली ने अपने वंश की लाज रखी। वर कैसा हुआ मैं नहीं जानती, तुम्हें लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगी थी, बोली थी।

से वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम भी ले लिया। बड़ी दीदी इससे बड़ी निश्चिंत हो गई, लेकिन बिंदु रात दिन रोती रही, चुप होने का नाम ही न लेती थी। उसको क्या कष्ट है ये मैं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए ये बात कहने का साहस नहीं होता था। किसी भी जिस बल पर मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक से लड़की उस पर काबिज, जिसकी यहाँ जा रही है तो वहाँ उसकी क्या दशा होगी। इन बातों की चिंता न करना ही अच्छा था। सोचती तो क्या मन कहाँ पहुँची। बिंदु ने कहा, दीदी ब्याह के अभी 5 दिन और हैं, इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने इसे खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह से 1 दिन पहले बिंदु ने अपनी बेटी के पास जाकर कहा, बेटी मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वही करूंगी। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे इतना मत धकेलो। कुछ दिनों से बीजी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे थे। उस दिन भी झरने लगे, लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, फिर शास्त्र भी तो है। उन्होंने कहा, बिंदु जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात ये थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था। बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे वर्जुन घर में हो। उनके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांत नहीं कह सकेंगे, इसलिए चुप रह जाना पड़ा। लेकिन एक बात समय से कोई नहीं जानता। जीती को बताना चाहती थी, पर फिर बताने लगे नहीं तो वे डर से मर जाती। मैंने उसे थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था। सोचा था जीती की नजर में तो जरूर ही पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने जैसे देख कर भी नहीं देखा। दुहाई दी धर्म की, इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, दीदी तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग किया। मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे दूसरी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें कभी नहीं त्याग सकती। 3 दिन बीते, तुम्हारे तालुके के लोगों ने तुम्हें खाने के लिए जो दिया था उसे मैंने तुम्हारे जठराग में से बताकर नीचे वाली कोयले की कोठरी के एक कोने में रख दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिला आती। 2-1 दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा, उसे खिलाने के बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने की ओर ज्यादा था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है।

que se puede perder con este parecido de Angelapi, que sigue con la chichurina, la tapada de su hijo, Jeto Purusha. Jeto Purusha. De que me vindo que participaba en la libertad, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद करता कि उसे कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता। ब्याह की रात वो ठीक था, लेकिन रात में जग के रहने के कारण और इसी तरह के और झंझटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीकर की थाली में भात खाने बैठी थी, अचानक उसके पति ने भाप से थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। निकलने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु रानी सचमणि हो। नौकर ने हो न हो चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी के खाने के लिए भाग दिया हो, इसीलिए उसे क्रोध आ गया था। बिंदु के दर्द के मारे मिली जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास ने उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी, वो भी पागल ही थी लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था, लेकिन दर्द के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया था। पति जब सो गए तो काफी रात बीतने पर वो किसी तरह चतुराई से भाग कर चली गए। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, रूही के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु तू जैसे रहती थी वैसे ही मेरे पास रही। देखो तुझे कौन ले जाता है यहाँ से। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोलती है। मैंने कहा वो कभी झूठ नहीं बोलती। फिर तुम लोगों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम। फिर मैंने कहा मैं अच्छे तरह से जानती हूँ बिंदु झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने डर दिखाया, अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो आपस में पड़ जाएंगे हम। मैंने कहा क्या अदालत ये बात नहीं सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल घर के साथ कर दिया गया। तुमने कहा था तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे हम। हाँ हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी है। जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेच कर करूंगी। तुम लोगों ने फिर कहा था क्या वकील के घर तक दौड़ोगी। हाँ इस बात का क्या जवाब होता। सिर्फ ठोकने के अलावा और कर भी जा सकती थी मैं। उधर बिंदु के ससुराल से उसके देश में आकर बाहर बड़ा हंगामा खड़ा किया। कहने लगा भाभी में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझे जा सकती थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूट कर मेरा आश्रय लिया हो उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े। ये बात मैं किसी भी तरह से मान नहीं सकती थी। मैंने हिम्मत करके कहा करनी दो थाने में रिपोर्ट, देखती हूँ। इतना कहकर मैंने सोचा कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजा तो बिंदु का कहीं पता नहीं। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी उसी समय बिंदु ने

हार आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया। उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था ना। संसार में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ नहीं है। उनकी तुलना में तो उनका लड़का सोने का चांद था। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा, किसका भाग ये खराब हो उसके लिए रोने से क्या फायदा भला। संसार भर में कायरता के इस सबसे अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष मन को कभी कहीं भी संकोच नहीं हुआ। इसलिए मानव जन्म पाकर भी तुम लोग बिंदु के व्यवहार पर क्रोध कर रहे थे। उसे तुम्हारा सिर नहीं झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत न था। मैं तो गांव की लड़की थी जिस पर तुम लोगों के घर आ पड़ी। फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी। धर्म संबंधी तुम लोगों की ये चर्चा मुझे किसी भी प्रकार सहन नहीं हुई। मैं इससे दूरवर जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाए वो अब हमारे घर लौट कर रही होगी, लेकिन मैं तो उसे ब्याह के एक दिन पहले ये आशा दिला चुकी थी कि साथ रहते

पैगोर के लिखी कहानियाँ पत्नी का पत्र इस कहानी का ये था तीसरा भाग वाचन स्वर ममता सिंह का इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई इस कहानी का चौथा भाग आपको सुनवाएंगे अगले समय।

स्वीकार करेलान। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो के ममता सिंह के साथ।

کے مطابق وہ بن گئے

Mais tu veux

तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी है।

Jesus.

अभिनेता का

साथ साथ कुछ वक्त गुजारेंगे मेरी बातों के साथ, महसूस करेंगे प्यार का एहसास। रेशमी सिहर से ढका तेरा चांद का चेहरा, न जाने कब से तेरे दीदार से ख्वाहिश लिए बैठा हूँ। काश हवाओं का एक झोंका एक पल को सुना हटा दे तो जरा मेरे बेचैन दिल को

के बादल बिजलियाँ गिराने को आदि हो जाएंगे। गया है एक एहसास दिल को होने लगा है, वो मेरा है

हवाओं ने इस तरह से ढोल दी कि मौत होती है डरो और दीवारे मन के आंगन में किसी के आने की आज का वो इंतजार होने लगा।

हैं सभी का स्वागत है। तुम्हारा साथ जर जरा सा मिल जाता तो तमाम शामें हसीन हो जाती। न सकती रातें तन्हाइयों में चांद को यूं निहारते हुए बातों ही बातों में गुजर जाता वक्त और रात का मधोज आलम।

point of view, I expect to see our five points of shape would cover the traffic in the world. This time, Rati se 11 बजे है और अब संपन्न होती है आज की ये सभा। इसी फ्रीक्वेंसी पर कल सुबह 5:55 पर हम विराजमान राज्यकालीन सभा के कार्यक्रम की शुरुआत।